0: बेची जाते
1: हाँ
0: चला चुए
2: ओ से साथे केंस निहो से तो हफ्ते दत ओ से साथे केंस लेट्रो एल एन फोली पर 1500 डॉलर N43. Néo noir honnache N43.